लक्षित अवस्था में देखकर श्री राम भगत श्री हनुमान जी बालाजी महाराज को याद करते हैं और किस तरीके से बालाजी महाराज से क्या आदेश देते हैं और दुख की घड़ी में बालाजी महाराज को याद करते हैं।

अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं, नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 नून इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

ए घोड़ा। सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो।
1: ए चोर

0: जानी।
1: ये बात है, कहीं नजर न लगा दीजिए।
0: अजी हम तो आपकी नजर के मारे हुए हैं।
1: तो फिर हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं?

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gana. Thank you.

0: हे अरे हे सूरदास का औलाद, तो अगर सुनाई नहीं पड़ा था हम कहा कहा थे, हम कहा ठहरा करने को कहा आगे आ गया।
1: हम ये बकवास सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ के राजा हैं और अब हम लौट कर आए हैं, हम राजा की तरह रहेंगे।
0: अरे हाई देखो इकालिया गैंडा के राजा की तरह रहेंगे, यानी अब हम तो हर प्रजा की तरह रहिए।
2: गोविंदा,
0: अरे गोविंदा नहीं जी, हवलदार बोलिए आप।
2: हवलदार साहब, लगता है दो डंडे देने ही पड़ेंगे।
0: हाँ ऐसा कहा,
3: दे दीजिए।
0: अरे रजवा का औलाद, इन्हें आओ रे, पुलिस का भाका नहीं समझता है क्या रे? हम पुलिस वालन का हंसना मना है, चलिए। अरे बगुआ
2: गोविंदा,
0: और हम तो के हुकुम देते हैं ईद दारू का अड्डा बंद कर दे।
3: मगर दारोगा जी, हम दिन भर तो हर ड्यूटी बजाई, मगर रात को ये धंधा
0: बंद खड़ा करो। अब बंद, हम कह दिया सो कह दिया। अरे दिन का बात नहीं है, रात का बात नहीं है, शराब पीना बुरी बात है तो शराब बंद का
4: बंद। लेकिन गोविंदा, नहीं नहीं हवलदार, नहीं नहीं नहीं दरोगा साहब, कल तो शिवरात्रि का दिन है।
0: अब अरे शिवरात्रि के दिन का बात हम कहा कहा थे, अरे कल तो छुट्टी का दिन होते हैं, भांग पिया जाते, का पिया जाते।
5: जो चिराग हमने जलाए वही चिराग हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं।
6: इससे पहले कि चिराग एक भड़कती आग बन जाए, उसे बुझा देना ही शुभ देती है।
5: जरा हम भी तो देखें उनकी लौ में कितनी गर्मी है।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले। हाय देखो जिधर मैं, शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले। हाय

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: आज तो तुम शहर जाने वाले थे, गाड़ी छूट गई क्या?
1: छूटी नहीं, छोड़ दी। चलती गाड़ी से किसी ने खींच कर उतार दिया मुझे।
0: किसने?
1: तुमने।
0: मैंने? मैंने कैसे?
1: तुम्हारी यही पुकार कल रात मैंने सपने में सुनी थी और इसी पुकार ने चलती गाड़ी से मुझे उतार दिया। जा रहा था शहर नौकरी करने, और जो काम करना नहीं चाहता था वही करने के लिए राजी हो गया।
0: कौन सा काम?
1: डोली उठाने का। अब रोज यहां आया करूंगा तुम्हारी पुकार सुनने के लिए। क्या हो गया तुमको?
0: मुझको कुछ नहीं हुआ, तुमको हो गया।
1: हा? मुझको?
0: हाँ हाँ तुमको।
1: कौन सा पागलपन देखा तुमने मुझ में? मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की?
0: पागलपन नहीं तो और क्या। दिन में मिली और रात को तुम्हारे सपने में आ गई। मैंने तो तुम्हें नहीं पुकारा था, फिर भी मेरी पुकार सुनकर चलती हुई गाड़ी से कूद गए। ऊपर से कहते हो रोज यही पुकार सुनने के लिए आया करूंगा, आखिर क्यों?
1: इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
0: प्यार? बस बस रहने दो, एक बार मिलने से प्यार हो जाता है क्या?
1: यूं तो प्यार बरसों तक भी मिलने से नहीं होता, और अगर होता है तो एक ही मुलाकात में हो जाता है।
0: अपने दिल के कोरे कागज पर कहानी मत लिखो, वरना ये परेशानी उम्र भर

ये कहानी नहीं है रानी, अरे प्यार है प्यार। क्या प्यार कागज पे लिखी कहानी नहीं जो

0: रोजी, ए रोजी, रोजी। पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया?
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो
1: तो
0: मुझे नींद नहीं आती थी,
2: मुझे भी नहीं आती,
0: मुझे भूख नहीं लगती थी,
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है।
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है, अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। मारिया, रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ यो-यो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा। देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है,
5: अच्छा,
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 5 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: ऑन किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती में सुनिए सभी तरह के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
1: हाय, हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे प्यारे दीवाने और दीवानियों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, आ चुका हूं लेकर बहुत ही प्यारा शो। ये मेरा भी फेवरेट है और आपका भी तो है ही, यानी 90s एंड न्यू स्पेशल। सबसे पहले मेरे पसंद गाने एंजॉय कीजिए और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे दीवाना बना दे दीवाना बना दे। बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हमारे सरफ भाई सरफराज पटेल जी साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं, वेलकम है। और मुबारक हुसैन जी भाई, मुबारक हो, आप जुड़ गए, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और अशोक देशमुख जी जी वेलकम करते हैं आपका भी, अशोक देशमुख जी। और जुड़े वाले दोस्त में शामिल हमारे संदीप सुतार जी, वेलकम करते हैं आपका भी संदीप सुतार जी। और सर्वेश भगत जी भी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी सर्वेश भगत जी, आपका भी स्वागत है। और आत्माराम पाटिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ दोस्तों में नाम है दीपक कुमार गायकवाड़ जी, वेलकम करते हैं आपका भी। काजल झक्का जी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और विष्णु चंद्र जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। साथ ही साथ हमारी नंदनी माँ जी आपको मेरा प्रणाम है, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और सर्वजीत सेठी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और नीतू शरण जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और इन प्रीति रायदास जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत वेलकम करते हैं, ओके जी। और यहाँ पे एमडी फैज आलम जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ हमारे जाकिर खान जी वेलकम करते हैं जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से। और सोनू गौतम जी, आपका भी वेलकम है, यानी जितने भी दोस्त सुन रहे हैं सभी का वेलकम वेलकम वेलकम। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं आप सभी के एक से बढ़कर एक गानों के साथ। और सबसे पहला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो कौन सा है, तो हमारे अब्दुल्ला शेख जी का गाना यहाँ पे दिख रहा है, ये सुनना चाहते हैं। याली मदद याली, ये गाना है, एंजॉय कीजिए, सुनवा दिया गैंगस्टर का।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना रहा है ये फीडबैक।
1: अस्सलामुअलैकुम भाईजान, बिल्कुल सही कहा आपने, ये लाइन आप पर बिल्कुल फिट बैठता है।
0: अच्छा,
1: मजा आ रहा है प्रोग्राम में, अच्छा लग रहा है।
0: थैंक यू सो मच भाई एमडी फैज आलम जी। और यानी कि प्रीति रायदा जी देती कि गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है। ओके, अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला, लेकिन फीडबैक भी बहुत सारे हैं जरा इसको भी शामिल कर लूँ। थोड़ा नेटवर्क बहुत स्लो काम कर रहा है मेरा, पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है भाई नेटवर्क को। और जाकिर जी लिखते हैं कि यह अली वाला गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। आत्माराम जी क्या कहते हैं, इनकी सुनते हैं।
2: भाईजान शेख अब्दुल्ला जी, पहला ही टॉप का सॉन्ग आपका सर, लगता है आज आप पहली बार रेडियो हॉटस्टार पर आ गए, तो आपका भी वेलकम करते हैं सर। शुक्रिया, मैं आपका दोस्त आत्माराम पाटिल, गाना भी बहुत टॉप, थैंक यू।
0: वेलकम जी आत्माराम पाटिल जी। और गीता रंजीत जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि या अली मदद अली, लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया। गंगे स्टार का विष्णु जी लिखते हैं कि अमन सर जी, राधे राधे, राधे राधे वेलकम करते हैं आपका भी। नीतू शरण जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं, लिखते हैं कि गाना अच्छा लगा। ओके, अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो मैं प्ले करने वाला हूँ किन का, हाँ सबसे पहले मैं जो गाना प्ले करने वाला हूँ वो हमारे गीता शरण जी का है। ये सुना चाहते हैं, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए।

0: बिल्कुल एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। वैसे हमारे एमडी फैजी क्या कहते हैं, जरा इनकी भी सुन लेते हैं।
1: वाह क्या गाना है, दिल को छूने वाला गाना। एक वक्त था ये गाना बहुत गाया करते थे हम लोग, आज भी सुनने में उतना ही अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया एमडी फैज आलम।
0: ओके जी, और ऐसा यानी कि लग रहा है कि आप यानी कि वहाँ पर ट्रेन में सफर कर रहे हैं जी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। सोनू गौतम की लिखते हैं कि बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। वाह क्या ये गाना है, यानी कुमार सानू की आवाज़ में मजा आ गया आशिकी का गाना सुनकर। और प्रियंका जी लिखते हैं कि एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बस एक सनम चाहिए, बहुत ही खूबसूरत नगमा है। अगला जो डिमांड है हमारी अनिशा जी का है, अनिशा जी सुनना चाहती हैं, बहुत ही प्यारा डिमांड, आशिक पुकारो या जो भी पुकारो भाई, लेकिन पुकारो। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बिल्कुल वो सब तो मैं हुई ही। फिलहाल मेरे पास फीडबैक बहुत सारे आ चुके हैं, शामिल करता हूँ। पहला ये
1: जय अमान साहब जी, शुभ संध्या, नमस्कार। नमस्ते जी। अनिशा जी अपने गाने में शामिल किए हैं और सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे फैज जी क्या कहते हैं, इनकी सुनते हैं
2: जी। ये भी सॉन्ग लाजवाब है, आप सही पकड़े हैं। अभी दीनदयाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से ट्रेन खुली है उत्तर प्रदेश में हैदराबाद के लिए, तो शादी में आए हुए थे, 8 दिन का छुट्टी था, आप जा रहे हैं।
0: ओके,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके जी, साथ ही साथ हमारे ये निवेशनल चैनल जी लिखते हैं कि आशिक पुकारो, दीवाना पुकारो, माशूक पुकारो, सब पुकारो, अच्छा लगा ये गाना सुनकर। और मनीषा शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है, लिखते हैं कि गाना सच में बहुत बेहतरीन चल रहा है। और गोविंदा खंडारे जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूं, अवधेश कुमार जी का सुनना चाहते हैं कि तू शायर है, मतलब इन्होंने नाम दे ही दिया शायर का। ओके, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: तू धड़कन है, मैं तेरी जिंदगी।
1: अरे तो खूबसूरत है तू तो मैं भी हूँ हंसी हूँ, इसमें क्या बात है? आप बिना नहीं देखे हो तो भी कोई बात नहीं है, आप मुझे पसंद हो ना।

0: शायर है, मैं तेरी शायरी वाला गाना अच्छा लगा मुझे भी, और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: रहमान सर जी, अवधेश कुमार जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी, और यहाँ पे विभूति भूषण शरण जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है, लिखते हैं क्या मस्त गाना चल रहा है, मजा आ रहा है सुनकर, और ये क्या कहते हैं भाई सोनू गौतम जी।
2: तेरी हर नज़्म तेरा हर गीत है याद मुझे।
0: अच्छा, आपको भी याद है।
2: जब तक

0: का गाना इतना अच्छा लगा जो फीडबैक देना ही पड़ा, थैंक यू, दिल से शुक्रिया।
1: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे गीता जी लिखते हैं कि मेरे पसंद का गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आत्मराम जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: अमन सर
1: जी
2: 90 स्पेशल तो क्या कहना सर,
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
2: जितनी भी तारीफ करें
1: कम है।
2: शुक्रिया सभी को, आत्माराम पाटिल।
1: ओके जी। और यहाँ पे अवधेश कुमार लिखते हैं कि थैंक यू अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और प्रशांत अमुलकर सर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सर जी आपका भी। और अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो गुड्डू जी का सीतामढ़ी बिहार से सुनना चाहते हैं, हमको हम इसे चुरा लो दिल में कहीं।

0: और आदरणीय प्रशांत अम्बुलकर सर जी लिखते हैं कि साजन फिल्म में गाना तो सुपरहिट लगा है, और विष्णु जी लिखते हैं गाना तो सच में ये भी बहुत नंबर वन लग रहा है, और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: जय अमां सर जी, गुड्डू जी अपने गाने में शामिल किए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी, और यहाँ पे सोनू गौतम जी क्या कहते हैं इनकी भी सुन लेते हैं।

0: थैंक यू अमन भाई इतना अच्छा गाना सुनवाने के लिए।
1: वेलकम जी, अगला जो डिमांड है वो मनीषा शर्मा जी का है। सुनना चाहती हैं इतना भी ना चाहो मुझे, और ये गाना डेडिकेट अमन जी आपको, सुंदरता की मुरत जी को और सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हैं। स्पेशल डेडिकेट वहाँ पे शर्मा जी को है, तो सुना दिया, इंजॉय कीजिए।

0: भी इतना भीना चाहूँ मुझे। और यहाँ पे अवधेश कुमार लिखते हैं कि भाई सोनू गौतम जी की आवाज मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, उनका फीडबैक। और प्रियंका जी क्या कहती हैं, इनकी सुनते हैं।
1: हम जुल्फे तो लहरा दे, अच्छा। दिन में रात ना हो जाए,
0: नहीं होगी, नहीं होगी।
1: हम आचल तो लहरा दे, हाँ। पर साथ ना हो जाए, पास आओ गले से लगा लो।
0: ना ना ना ना कबो ना। और यहाँ पे ये फिर
2: आरजे मासा जी, मनीषा शर्मा जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको, भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू,
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे नंदलाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं गाजीपुर यूपी से। और सोनू गौतम जी लिखते कि इतना भी ना चाहो मुझे कि एक पल मैं तुमसे दूर रह ना सकूं, ये मनीषा शर्मा जी के पसंद बहुत लाजवाब लगी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मनीषा जी लिखते हैं कि वेरी वेरी थैंक यू अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और राधा कृष्ण गोप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो मैं प्ले करने वाला हूँ किनका बता दूँ, मनोज इन शाकी जी का। मनोज शाकी जी सुनना चाहते हैं, जो तुम्हें चाहे उसको सताना, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। ओके, इंजॉय कीजिए।

0: ओके बस इतना ही। और यहाँ पे अर्जुन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और लिखते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर सॉन्ग चल रहे हैं, हर घंटे पर रेडियो हॉट स्टार का टाइम बताता था, अब क्यों नहीं बताता है जी। तो जब से इसका मैंने सर्वर को चेंज किया है तो मैं ना मतलब हमें यानी कि समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं इसको ठीक करूं, मतलब इसको इसीलिए वो टाइम नहीं बता पा रहा है। ओके और कुंता जी जी गुड इवनिंग, अमन जी गुड इवनिंग, वेलकम करते हैं आपका भी कुंता बिनी जी। काजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है। ओके और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि जो तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं, गाना मुझे अच्छा लगा है। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं बहुत ही शानदार डिमांड है। और एम ताहिर जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि अमन खान जी आदाब, और कुछ काम की मशहूरियात की वजह से शो की शुरुआत, कोई बात नहीं आप आ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका।
1: एक दिन हमको भेजा था अब किसको भेजा,
0: अच्छी बात नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं भाई। अनिकेत सुम कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो है यानी कि चोरी चोरी दिल चोरा, ये वाला गाना इंजॉय कीजिए इस गाने को। और बता रहा हूँ कि किस

0: चोरी चोरी। और इस गाने में हमें शामिल हो रहे हैं बाबूलाल अनजाना जी हैं और एक शायद कोई और भी हैं, जरा उनकी ऑडियो को मैं प्ले करता हूँ, शायद यही गाना है उनका भी मेरे ख्याल से, आई होप, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लिखा है चोरी चोरी।
1: अम्बेश कुमार सोनी, पूर्णिया बिहार, चोरी चोरी इतिहास का गाना।
0: अच्छा, चोरी चोरी, ओके।

0: चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं। थैंक यू अमन भाई इतना अच्छा सॉन्ग सुनाने के लिए।
1: ओके जी, और हमारे सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, इनकी भी सुनी लेते हैं।
2: जय अमन सर जी, बाबू लाल अंजाना जी अपने गाने में शामिल किए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
1: वेलकम जी। और हमारे अनिकेत सोम कुंवर जी लिखते हैं कि अच्छा ओके, मैं कुछ भाई आप सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज दीजिए प्लीज़, कोशिश करूँगा मैं। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस लाजवाब डिमांड के लिए बाबूलाल लंजाना जी को। मीना कुमारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है मीना कुमारी जी आपका। और गजानंद जी लिखते हैं कि चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, ये गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं। और कुंता जी लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए बाबूलाल लंजाना जी को धन्यवाद। और विभूति भूषण शरण जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्रोग्राम भी शानदार चल रहा है। प्रियंका जी क्या कहते हैं, इनकी सुनते हैं।
3: मैं तेरी बाहों में साजन सारी उम्र गुजारूंगी, बस तुझको ही चाहूंगी, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे।
1: फिलहाल यहाँ पे राधा राधे राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं राधे राय जी आपका। और आप सॉन्ग रिक्वेस्ट में भेज दीजिए प्लीज, अनिकेत सोम कुंवर जी लिखते हैं कि अरे भाई फिलहाल सॉन्ग रिक्वेस्ट में भेजिए प्लीज। एक मिनट,
4: अमन जी एक छोटी सी बालिका मेरी दुकान पर आई है। अच्छा। और ये भी आपका प्रोग्राम जब मैं बजाता हूँ दुकान पर सुनती है, और ये आपसे कुछ पोयम सुनाना चाहती है, तो सुनिए और सुनाइए।
5: सुना क्यों रूठी है गुड़िया रानी, खा लो लड्डू पी लो पानी, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते बात मान लो गुड़िया रानी। परी
4: नाम बताओ।
5: परी।
4: अच्छा, परी परी के वट है सिवनी मालवा मध्य प्रदेश से। धन्यवाद सर।
1: तो हमको भी चॉकलेट दो ना भाई परी। और यहाँ पे यानी कि प्रशांत अम्बुलकर सर जी लिखते हैं बहुत बढ़िया प्रोग्राम चला, थैंक यू सो मच सर जी आपका। और विष्णु जी लिखते हैं गाना मुझे बहुत मस्त लगा है। मनीषा जी लिखते हैं कि अच्छा ओहो ओ तो उनको यानी कि उनको क्या प्रॉब्लम है जरा मुझे ये बताइए, मैं उनको उनको मैं समझा देता हूँ। और एमडी सलीम भी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, तो यानी वेलकम है भाई एमडी सलीम जी यानी कि सीतापुर से। और मंगेश देशमुख जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि नाम अम्बेश कुमार इन सोनी जी, ये सुनना चाहते हैं इतिहास का ये गाना चोरी चोरी, इंजॉय कीजिए।

मेरे को रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दिया और राधा कृष्ण गोल्ड लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए और बाबूलाल जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है और सीता गोल्ड लिखते हैं कि नमस्कार अमन सर जी मैं भी जुड़ गई हूँ बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी और कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही बड़ी डिमांड है अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ और ओके अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो भी बहुत ही प्यारा है और ये है यानी कुंता बेली जी की ये सुनना चाहती है थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे और सच में थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी और ये फिर व्यक्त होता है।
1: अरे मां सर जी कुंता बेनी जी अपने

0: आने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
1: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे जन्मदिन कुर्ता बेन जी के पसंद बेहतरीन लगे, उनको धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा गाना सुनाने के लिए। और ये फिर सुनते हैं,
2: थोड़ा सा प्यार हुआ है,
1: अच्छा
2: थोड़ा ही बाकी
1: है।

0: और वैसे फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, पहले इनकी सुनते हैं।
1: अमन सर जी, नीतू सरन जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, आशिकी का लाजवाब गाना, मजा आ गया।

0: कुमार जी के ग्रुप का है, वो सुनना चाहते हैं मेरे सपनों के राजकुमार।
1: मेरे सपनों के राजकुमार।
0: और इसी गाने में शामिल है हमारी मिसाल अंगद जी भी।

0: वेलकम एक और रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं और सबसे पहले तो सर्विस भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: अर्जय मसा जी, गजानन सरोकर जी का पूरा ग्रुप का भाई और मिसालंगा जी भी इसमें शामिल है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे विष्णु जी लिखते हैं कि बहुत अच्छा गाना चल रहा है, मजा आ गया सुन के। और गजानन जी सिंह आदरणीय अमन जी के प्यार भरा नमस्कार है, गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। और यानी मीना कुमार जी लिखते हैं कि ओके, कोशिश करता हूँ मैं अगर गाने को प्ले करने के लिए। और राधा कृष्ण को भी देते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड के लिए, धन्यवाद देते हैं दोस्तों को। और रवि मोहड़े जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं रवि मोहड़े जी। और आत्माराम जी क्या कहते हैं इनके सुनते हैं।
2: प्यारे अमन सर जी,
0: जी
2: हमारे गजानन मोहन सालोकर और विशाल अंगद जी, इनका ग्रुप का सॉन्ग बहुत ही अप्रतिम, वेरी नाइस। शुक्रिया सभी भाइयों को, मैं आत्माराम पाटिल।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपका भी। कुंता जी देते कि मिसालंगा जी और गजानन जी के ग्रुप की डिमांड बहुत अच्छी लगी, दोनों को धन्यवाद देते हैं। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि मेरे सपनों के राजकुमार का गाना बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि आजा मेरे सपनों के राजकुमार, जानवर का गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद इस गाने के लिए। मनीषा जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए, बहुत बहुत वेलकम है मनीषा जी आपका भी। और प्रियंका जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है, धन्यवाद। और विभूति भूषण शरण जी लिखते हैं कि ये गाना भी अच्छा लगा है हमारे गजानन जी के ग्रुप की डिमांड, शानदार। और ये फिर रहे
3: हेलो अमन सर
0: जी,
3: मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके लाइव कार्यक्रम में फिर एक बार फीडबैक दे रहा हूँ। और अमन सर जी, अभी जो गाना आपने मेरा सुनवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय गजानन सालोकर जी के गाने में मुझे गजानन सालोकर जी ने याद किया, तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और अमन सर जी, आज सुबह जो 9 से 11 बजे तक जो गाने आपने सुनवाए, अमन सर जी बहुत बेहतरीन गाने लगे। मैंने 2 घंटे तक लगातार रेडियो हॉटस्टार के गाने सुनने का मजा लिया। और अमन सर जी, आज का दोपहर का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा, और अभी तक भी जितने गाने आपने सुनवाए ये गाने भी बहुत अच्छे लगे, धन्यवाद।
0: ओके, अगला डिमांड है वो मैं सुनाता हूँ आरजे वंशिका जी का।
4: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। और मैं भी 97 न्यूज़ स्पेशल के आज के शो में जुड़ चुकी हूँ। आज ये मन जी शो बहुत ही प्यारा जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन शो चल रहा है। और आज की 97 न्यूज़ में मैं भी एक गाना लेके आई हूँ। आज सुबह थीम चॉइस में आज ये मन जी जो आपका गाना था, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा गाना था। और उस गाने से मुझे इस गाने की याद आ गई जो कि मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी आज के 97 में, जो कि कविता कृष्णमूर्ति जी और कुमार सानू जी की आवाज़ में है, जो कि रिलीज हुआ था तुम मिले जब से। और यानी गाने के बोल हैं, ये दिल आपका हुआ।
5: हम तो थके खा बैठे, अब तुम क्या खाने आए हो, बात करो कुछ खेतों की, तुम जहां से हो।
0: थैंक यू सो मच।
4: और सभी लिसनर्स को जो सुन रहे हैं, सभी लिसनर्स को डेडिकेट करना चाहूंगी, जो कि चुपके चुपके सुनते हैं लाइव में, जो भी सुन रहे हैं सबको डेडिकेट रहे प्यारा सा नगमा।
0: एंजॉय कीजिए, गाना प्ले करिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, शामिल करता हूँ मैं यहाँ पे। गीता जी लिखती हैं कि वाह क्या जानदार प्रोग्राम चल रहा है, अच्छा ऐसा है क्या। और प्रियंका जी लिखती हैं वाह बहुत ही प्यारा गाना है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, आरजे वंशिका जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी, सर्वेश भगत जी और आत्माराम जी क्या कहते हैं, जरा इनकी भी सुन लेते हैं।
2: अमन सर जी, हमारी प्यारी आरजे दीदी वंशिका जी, इनका सॉन्ग बहुत ही रोमांटिक और उनकी बातें भी बहुत अच्छी लगी सर, और उन्होंने हमें याद किया, तहे दिल से उनका स्वागत है। मैं आत्माराम पाटिल।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आत्माराम पाटिल जी। और हमारे गजानंद जी लिखेंगे, आदरणीय आरजे वंशिका जी की पसंद मुझे बेहतरीन लगी है, उनको धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और अजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। ओके जी, थैंक यू सो मच अजय शर्मा जी, बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और ये फीडबैक सुनते हैं। आपका भी। और यहाँ पे इनकुंता जी लिखेंगे, थैंक यू सो मच आरजे वंशिका जी, इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि ओके जी मुझे पता है, मैसेज भी आ गया मेरे पास। और एम ताहिर जी लिखते हैं कि आरजे वंशिका जी शो में इस खास गीत की फरमाइश करना बेहद नफीस और उम्दा, जो कि ये मुसीकी की यूं ब्याह करता है, उनकी पसंद हवाओं में मिठास और महफिल में खास रूहानी रंग घोल गई, मानो साजो और अल्फाज आपस में मिलकर ये दिलकश अफसाना सुना रहे हों। और सर जी मैंने भी बिल्कुल सुनते हैं।
3: अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो सर?
0: बहुत अच्छा, आप बताइए।
3: सर जी आपके इस खूबसूरत शो में सोनू गौतम जी और प्रियंका जी की आवाज़ की रवानी, लय की पाकिजगी और सुरों की नफासत, जिससे हम जैसे सुनने वालों के दिलों में एक अजीब सी मिठास घोल रही है। इन दोनों का ये अंदाज़े बयां और तरन्नुम इस महफिल की जान है, जिसे सुनकर मैं नहीं और भी श्रोता पूरी तरह उनकी आवाज़ के जादू में खो जाने को मजबूर हो रहे हैं। लाजवाब दोनों की परफॉर्मेंस।
0: ओके थैंक यू सो मच आपका भी। और यहाँ पर राधा कृष्ण गोप लिखते हैं बहुत ही बेहतरीन डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच। और मंगेश दशमुख जी लिखते हैं कि अमन सर जी आरजे वंशिका दीदी जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है। अगला जो डिमांड है वो रश्मि जी का है।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और इसी बात पर जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो मैं प्ले करने वाला हूँ, यानी कि सोनू गौतम जी का। तो ये सुनना चाहते हैं जिंदगी और तुम आए, मतलब गाने के बोले और तुम आए। एंजॉय कीजिए। और गाना बता दूं कि डेडिकेटेड है अमन जी आपको और आपकी वो यानी आपकी मतलब खुशी जी को भी, आरजे वंशिका जी को, और स्पेशल डेडिकेट है यानी प्रीति राय दास जी को, और एम साहिर जी को, और सुनील कुमार जी को, और सतीश शर्मा जी को, और प्रियंका जी को, पूजा भास्कर जी को, और कायनाथ जी को, कुंता बेनी जी को, और जितने भी दोस्तों ने सभी को।

0: मॉडल का मेरे रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे और सोनू गौतम जी देखते हैं कि आरजे वंशिका जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनका और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी सोनू गौतम जी अपने गाने में शामिल किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको भी धन्यवाद देते हैं थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी और यहाँ पे राधा कृष्ण गोप देखते हैं ये गाना मुझे बहुत प्यारा लगा थैंक यू सोनू गौतम जी। गजानंद जी लिखते हैं कि सोनू गौतम जी के पसंद बेहतरीन लगी उनको धन्यवाद देते हैं और यहाँ पे कुंता विनय जी लिखते हैं थैंक यू सो मच सोनू गौतम जी आपने इतना प्यारा गाना डेडिकेट किया और एम ताहिर जी लिखते हैं कि सोनू गौतम जी की पसंद हकीकत में बेहद खास है जो ये बयां करती है कि भीड़ से अलग चलने वाले का हुनर हर किसी के पास नहीं होता उनके चुने हुए गीत का अलग अंदाज उनकी गहरी और अनोखी सोच ही का एक आईना है और कुछ अल्फाज सोनू गौतम जी के नाम जमाने से बेखबर अपनी एक अलग ही धुन सुनते हैं और सोनू जी की भीड़ का हिस्सा नहीं अपनी अलग पहचान बनाते हैं उनकी पसंद का हर एक नगमा उनकी अनोखी सोच की गवाही देती है वो सिर्फ गीत नहीं सुनते उनमें छिपे जज्बातों को अपनाते हैं क्या बात है। अगला जो मैं अच्छा यहाँ पे आरजे रत्ना आवाज के मलका आरजे रत्ना जी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत वेलकम करते हैं लिखते हैं कि और तू मैं बहुत ही नाइस सॉन्ग है और यानी प्रीति रायदास जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद सोनू गौतम जी मुझे सॉन्ग डेडिकेट करने के लिए और जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं वेलकम करते हैं। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूं वो विभूति भूषण शरण जी का वो सुनना चाहते हैं कितना प्यारा है ये चेहरा जिसपे हम मरते हैं बिल्कुल बहुत प्यारा चेहरा है देखते हैं तो देखते रहिएगा सुंदरता की मुरत जी की

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। वैसे जितेंद्र जी जितेंगे सुपर फॉर मैच चल रहा है और आवाज के मलकार जी रत्ना जी लिखते हैं कि ये चेहरे की लिखते हैं कि चेहरे की इस मासूमियत पर दिल यूं ही ठहर जाता है। लिखती हैं कि चेहरे की इस मासूमियत पर दिल यूं ही ठहर जाता है और जो एक बार देख ले वो फिर कहां नजर हटा पाता है। और कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम बढ़ते हैं, सुपर पसंद लगा, धन्यवाद देते हैं। और पिकुराय लिखते हैं कि ये कितना प्यारा है ये चेहरा, गाना मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद। और राधा कृष्ण को लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच। और कुंता जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग, ओके जी। और ये क्या कहते हैं सुनते हैं
1: आरजे अमासा जी, विभूति शरण जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, गाना बहुत ही सुनकर अच्छा लगा है। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।

0: थैंक यू अमन भाई मेरा गाना प्ले करने के लिए, और जिन लोगों ने फीडबैक दिए उनके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया।
1: ओके जी, अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो सुनीता गोप जी का है। सुनना चाहती हैं दिल में सनम की सूरत हो। जी बिल्कुल, दिल में तो सनम की सूरत होती है। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

एक और जिंदगी देगी। वैसे आज गाना मैं कम ही प्ले करने वाला हूँ क्योंकि गाने की डिमांड बहुत ज्यादा है दोस्तों ने किया है। सभी का फरमाइश तो पूरी नहीं हो पाएगी लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है। और जितेंद्र जी लेते हैं कि ये पसंद बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच सुनीता गोगी। निशांत रायपुरे जी जुड़े हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, लिखते हैं गाना बहुत अच्छा लग रहा है। आत्माराम जी लिखते हैं कि बहन सुनीता गोगी जी की डिमांड मुझे अच्छी लगी, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और अर्जुन बिन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अर्जुन बिन जी, गाजीपुर यूपी से। और विकास गडकरी जी भी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। लिखते हैं कि दिल में सनम की सूरत वाला गाना मुझे सुपर लगा है। राधा कृष्ण गोविंद जी का हमारी श्रीमती जी का डिमांड बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। अगला जो डिमांड है वो विकास गडकरी जी का ही है, वो सुनना चाहते हैं ये गाना, एंजॉय कीजिए।

यहाँ पे सुनीता गोप जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और गजानंद जी लिखते हैं कि सुनीता गोप जी की डिमांड मुझे बहुत पसंद आई है। काजल ठाकुर जी लिखते हैं गाना मुझे बहुत प्यारा लगा है। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि ये पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, धन्यवाद देते हैं विकास जी को। विकास जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। अगला जो डिमांड है वो मैं मीना जी के पसंद का इन प्ले कर रहा हूँ और सभी दोस्तों को डेडिकेट कर रही है। तो इन एंजॉय कीजिए मीना जी अपने गाने को।

एक है वैसे फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं। राधा के संकोच जी लिखते हैं बहुत ही लाजवाब डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और एमडी सलीम जी लिखते हैं कि मैं सीतापुर से हूँ और गाने की फरमाइश, हाँ आपको वहाँ भेजना पड़ेगा सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से, भेज दीजिए मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करने वाला हूँ आज क्योंकि बहुत सारी डिमांड है। और यहाँ पे दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि चांद को देखकर और चांदनी से सुकून मिलता है, वैसे ही रेडियो हॉट जाके गाने सुनकर दिल को सुकून मिलता है, जब रात की खामोशी में सुरों का साथ मिलता है तो धड़कन कुछ जैसे कोई खूबसूरत एहसास मिलता है। ओह क्या बात है। वैसे यहाँ पे राहुल जी लिखते हैं कि ये मीना जी की डिमांड बहुत ही अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। काजल झका जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच मीना जी आपका। और ये मनहन इनको क्रेजा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कि लाजवाब गाना चल रहा है। गजानन जी लिखते हैं मीना जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद। और मनीषा जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है। निशांत रायबोले जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना के लिए, थैंक यू सो मच। मीना जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। अगला जो डिमांड है हमारे शाहिद जी का है, शाहिद जी के बाद मैं यानी कि प्ले करूंगा एम ताहिर जी का। फिलहाल शाहिद जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को। शाहिद अंसारी जी

बिल्कुल दिलों का हाल वैसे यहाँ पे कुंदा जी लिखते कि यहाँ पे सुनीता गोप जी, अभिका जी, मीना जी, सभी की डिमांड बहुत प्यारी प्यारी, सभी को थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और मनीषा शर्मा लिखते हैं सुपर सॉन्ग जी, बिल्कुल। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि जिंदा रहने के लिए ये सिलसिला एक है। अमन जी, ये कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के, धन्यवाद देते हैं। और जुड़ चुके हमसे ईश्वर साबले जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, लिखते हैं कि आई लव रेडियो हॉट स्टार, थैंक यू सो मच। अगला जो डिमांड एमडी ताहिर जी का, लिखते हैं कि बेचैन मेरा दिल, ये गाना सुनना चाहते हैं फिल्म ये मोहब्बत से। और अमन जी आपको डेडिकेट है, आपकी सुन जाता है कि मुरा जी को भी डेडिकेट है, और खासकर इन मैजिकल गर्ल यानी कैना जी को डेडिकेट है। और कुछ दोस्त हैं जैसे कि सोनू गौतम जी, सुनील कुमार जी, बांके बिहार वाले, प्रिंस पासवान जी, और हमारे उशेर सिंह इंसैनी जी को है, और जितने भी दोस्त अभी सुन रहे हैं सभी को मेरा गाना डेडिकेटेड है। तो सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए

सकेंगे हम ताहिर जी। आपकी पसंद ये मोहब्बत है, शानदार गीत सुनने को मिला, मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए, राधा कृष्ण गोपी जी की माइंड ब्लोइंग सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं हम ताहिर जी को। और निशांत है बोले लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाने के लिए धन्यवाद हम ताहिर जी। अगला जो डिमांड है वो मैं यानी प्रीति रायदा जी का प्ले करना चाह रहा हूँ, और ये गाना वो अपने यानी समवन स्पेशल को डेडिकेट करना चाहती हैं, तो इंजॉय कीजिए। आपके गाने को मैंने प्ले कर दिया यानी सुबह से लेकर शाम तक।

0: जी मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, फिर बैग आ चुका है।
1: आरजे अम्मा सर जी, एम ताहिर जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और एम ताहिर जी देंगे, अमन जी आपका तहे दिल से शुक्रिया मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए और गाने को पसंद करने के लिए। गजानंद जी देखते मोहरा का गाना मुझे लाजवाब लगा है, धन्यवाद। ओके जी, और प्रीति दादा यानी कि प्रीति दादा जी देखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और

0: शाम तक मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, नाइस सॉन्ग।
1: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपको। और यहाँ पे राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि गाना मुझे इतना प्यारा लगा है कि हम क्या बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रीति रायदास जी को। कुंता जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत डिमांड के लिए थैंक यू सो मच आपका प्रीति जी। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि नाइस पसंद चल रहा है। और मनीषा जी लिखते हैं कि मोहरा का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और निशांत है वो लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड है। ओके जी, अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो कौन सा है? हम प्यार करने वाले तो है, लेकिन फिलहाल आते हैं ऐड के बाद।
2: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती में सुनिए सभी तरह के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से,
1: बिल्कुल बजाते रहो दिल से। एंजॉय कीजिए हम प्यार करने वाले हैं।
3: हम प्यार करने वाले दुनिया से।
1: बता दो ये डिमांड है हमारे किन का? ब्रह्मजीत सिंह जी का भाई। ब्रह्म

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बनाते हैं और राहुल पासी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम है। लिखते कि सुबह से लेकर शाम तक इन प्रीति रायदास जी गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। आत्माराम जी लिखते हैं कि दिल में भी गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं अप्रतिम गाने के लिए। और जितेंद्र जी लिखते हैं सुपर फरमाइश, थैंक यू सो मच। गजानंद जी लिखते हैं कि हम प्यार करने वाले गाना बहुत अच्छा लगा है। और मीना जी लिखते हैं कि दिल मूवी का गाना मुझे बहुत ही पसंद है, धन्यवाद। और राधा कृष्ण को जी लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये फिर वैसे होते हैं
1: लेना नहीं।

0: थैंक यू अमन भाई इतना अच्छा गाना सुनवाने के लिए, पसंदकर्ता को दिल से शुक्रिया।
1: ओके और यहाँ पे विकास गडकरी जी लिखते कि दिल का गाना सुपरहिट लगा है, धन्यवाद। और लाहौर पासी जी लिखते कि हम प्यार करने वाले भी गाना मुझे अच्छा लगा। अगला जो डिमांड है हमारा अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी और सर्वेश भगत जी का है, तो सुनवाते हैं इनकी पसंद का ये गाना।
2: नमस्कार अमन सर।
1: नमस्कार,
2: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख। आज का थीम है स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल। तो मुझे एक गीत सुनना है, फिल्म का नाम है बारूद और गाने का बोल है, हम तो तुमसे मोहब्बत करते थे हमेशा हमेशा। ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूर्त को और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
1: और इसी गीत में सर्वेश भगत जी।
3: आरजे अमन सर जी,
1: जी।
3: नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है बारूद और गाने का बोल है हम तुमसे मोहब्बत, हम तो तुझसे मोहब्बत करते हमेशा हमेशा। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बनाते, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरत दहा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत हेमंत भगत वर्ष किशोर भगत आनंद शेखर नंदन प्रकाश सुनील कुमार कुमारी सूरज कुमार मनोज जायसवाल अशोक देशमुख जी आत्माराम पाटिल जी सैयदनु जी संतोष कुमार जी मुन्ना जी आरजे अमन सर जी सुंदरता की मूर्त जी आरजे वंशिका जी आरजे आकांक्षा जी आरजे एमएस परमार जी आरजे आदित्य जी आरजे सोनी जी आरजे रत्ना जी और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल है, सभी को सुना दीजिएगा। जयराम जी के अमन सर जी।
4: हेलो प्यारे आरजे अमन खान सर जी,
1: जी जी।
4: गुड इवनिंग, शुभ संध्या, सप्रेम नमस्कार। मैं आत्माराम पाटिल ग्राम लिया तहसील मलकापुर जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से आज बिल्कुल आपके रेडियो हॉटस्टार पर 90 स्पेशल की गाने मैंने लेके आया हूँ सर। मूवी का नाम है बारूद और सिंगर है सर, सिंगर है अलका याज्ञिक और सोनू निगम।
1: अच्छा,
4: वैसे आर्टिस्ट है अक्षय खन्ना और ट्विंकल खन्ना, ट्विंकल खन्ना अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना। और गीत के बोल कुछ इस प्रकार के है सर, हम तो तुझे से मोहब्बत करते हैं हमेशा हमेशा, हम तो तुझे से तुमसे अदा से मरते हैं हमेशा हमेशा।
1: अच्छा,
4: तो यह गीत बिल्कुल हमारे साथ साथ जैसे कि अशोक देशमुख जी है, सर्वेश भगत जी है, आप है सर, आपकी सुंदरता की मूर्त है, गजानन सालोकार जी है, सैयद जुनू जी है, बिल्कुल सभी को ये गीत सुना दो सर।
1: ओके, लेकिन मैं बता दूं कि इस गीत को गाया हुआ है हमारे कुमार शानू के साथ साथ अलका याग्निक ने। एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल हमेशा हमेशा हमेशा वैसे फिर बेकार चीजें है और कुंता जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग है। थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और यहाँ पे गाजानंदी आत्माराम जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है फिल्म बारूद से गाना मुझे लाजवाब लगा है। धन्यवाद देते हैं। और सरोज भगत जी क्या कहते हैं?
1: आरजे अमन सर जी धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। हमारा तीन भाई का फरमाइश हमारा आत्माराम पाटिल जी अशोक देशमुख तीनों भाई का गाना आप अपने प्रोग्राम में जगह दे दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
0: वेलकम।

0: कमल सर जी, कुमार सानू और अलका याग्निक जी ने यह गाना गाया हुआ है मूवी बारूद का, और उम्मीद करते हैं सभी को ये गाना बिल्कुल पसंद आ जाएगा। और आपने सर हमारे तीनों भाइयों का पसंद प्ले कर दिया, शुक्रिया आपको। मैं आत्माराम पाटिल, थैंक यू।
1: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और सोनू गौतम जी से हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे हमेशा, ये कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ में इतना प्यार सुपर हिट गाना सुनवाने के लिए थैंक यू सो मच दिल से। बाबूलाल जी से आत्माराम पाटिल जी और सुरेश भगत जी की डिमांड बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद देते हैं। और राधा कृष्ण को भी देते हैं बहुत ही खुश और डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। कुंता जी लेते हैं, तीनों दोस्तों की डिमांड शानदार लगी है। अगला जो डिमांड है हमारे सरोजी शर्मा जी का है, वो सुनना चाहते हैं ये गाना, खाते हैं कसम, एंजॉय कीजिए।

0: दिल ना लगाएंगे बिल्कुल। वैसे फिलहाल मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं राहुल पासी जी से कि हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे हमेशा वाला गाना मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, सरजीत सेठी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे यानी कि मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों के डिमांड बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं सरबजीत सेठी जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, खाते हैं कसम। और राधा कृष्ण को भी लिखते हैं बेहतरीन डिमांड के लिए थैंक यू सो मच सरबजीत सेठी जी। विकास गडकरी जी लिखते हैं कि लाजवाब गाना चलता है ये कुमार शानू की आवाज़ में, थैंक यू सो मच सुनवाने के लिए। और ये फिर वैसे लेते हैं क्या कहते हैं।
2: अमन सर जी पूरे हफ्ते का बेहतरीन प्रोग्राम बोले तो 90 स्पेशल,
0: अच्छा
2: है ना सर, सही बात।
0: जी जी बिल्कुल
2: बिल्कुल।
0: ओके, और जितेंद्र जी लिखते हैं नाइस सॉन्ग चला। अगला जो डिमांड है वो राहुल पासी जी का है, वो सुनना चाहते हैं सिलसिले मुलाकातों के, ना छोड़िएगा। ओके एंजॉय कीजिए।

0: बहुत ही शानदार गाना चल रहा है काजल झका जी लिखते, गाना तो बहुत ही प्यारा प्यारा प्ले हो रहा है। और राहुल पासी जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और अर्जुन शर्मा जी लिखते हैं कि आज अभी तक जितने भी गाने बजे हैं सभी सुंदर सुंदर बजे हैं, और सभी दोस्तों का थैंक यू सो मच, यानी कि कहाँ से लाते इतने प्यारे प्यारे गाने। और कुंता जी लिखते हैं कि ये सरोजी सेठ जी की डिमांड मुझे बहुत अच्छी लगी है, और राहुल पासी जी की भी डिमांड थैंक यू इसके लिए। और हमारे ईश्वर यानी कि शाब्दे जी लिखते हैं कि आई लव रेडियो हॉटस्टार, थैंक यू सो मच आपका। और यहाँ पर राधा कृष्ण को भी लिखते हैं बहुत ही सुंदर डिमांड। अगला डिमांड नंदलाल जी का,
1: नमस्ते अमन सर, गुड इवनिंग, मैं नंदलाल यादव गाजीपुर यूपी से। सर 19 स्पेशल में मुझे भी एक गाना सुनना है, और गाने के बोल है

तुझे बिन तड़प रहे हैं, यादों के सिलसिले अब दिल में उतर रहे हैं। दिलकश है हर नजारा तुझे बिन।

0: पता नहीं ये गाना है या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे यही मिला है, मैंने यही प्ले किया है, आप देख लीजिएगा नंदलाल जी।
1: धीरे धीरे बातें कम हुई और खामोशी बढ़ने,
0: लेकिन आपने लिखा है उदित नयन की आवाज में, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये गाना नहीं है, मैंने गलत गाना प्ले कर दिया ऐसा मुझे लग रहा है।

0: लिएगा। राहुल पासी जी की पसंद एकदम लाजवाब लगी अमन भाई, दिल से थैंक यू इतना अच्छा गाना प्ले करने के लिए।
1: ओके जी, और यहाँ पे हमारे गजन अंजलि जी का राहुल पासी जी और नंदलाल यादव जी की डिमांड लाजवाब, ये वाला गाना बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और सर्वेश भगत जी
2: और जय अम्मा सर जी, नंदलाल यादव जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, और सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल किए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
1: वेलकम जी आपका भी। और हमारे यानी कि ईश्वर साहब ने लिखते कि हमारे दोस्त ब्रह्मारी कदम अभिमान इन सामले बलिराम सामले की फरमाइश है सर, एक गीत सुना दीजिए। अच्छा ओके, मैं कोशिश करूँगा, आप वहाँ पे सॉन्ग रिक्वेस्ट में भेजिएगा अगर मैं यहाँ भूल जाता हूँ तो, इसीलिए क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं तो मैं कोशिश करूँगा। और ये फिर कैसे
3: अमन सर जी, सभी श्रोता भाई अपने अंतर्मन से कमेंट के बारे में फीडबैक देते हैं, अच्छी बातें करते हैं, यही रेडियो हॉटस्टार की विशेषता है सर। आत्माराम पाटिल।
1: ओके थैंक यू सो मच आपका भी आत्माराम पाटिल जी। साथ ही साथ हमारे यानी मीना जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही अच्छा लगता, बहुत ही प्यारा था, उनको धन्यवाद देते हैं नंदलाल जी को। और काजल झका जी लिखते हैं सच में गाना बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद इस गाने के लिए भी। और प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। ओके, और विजय कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। और आमना खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि यादों के सिलसिले वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद नंदलाल जी। कुंता जी लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच नंदलाल यादव जी। विष्णु जी लिखते हैं कि ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद। और निशांत अब लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड के लिए धन्यवाद। और मनीषा जी लिखते हैं वाह क्या गाना है। ओके जी, और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं नंदलाल जी।
4: सर जी, मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी साथी फीडबैक दिए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। मैं नंदलाल यादव गाजीपुर यूपी से।
1: और इसी बात पे एक और डिमांड आई है हमारे नंदलाल सॉरी अर्जुन जी यानी कि गाजीपुर यूपी से, ऐ मेरी बेखुदी, ये गाना सुनना चाहते हैं, सुना दिया, इंजॉय कीजिए।

0: मेरे पास मैसेज आ रहा है कि इसमें गाने की तो आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ म्यूजिक की आवाज ज्यादा आ रही है। ओके, तो हो सकता है कि यहाँ तो मुझे बिल्कुल सही सुनाई दे रही है, शायद इसके म्यूजिक में कुछ नहीं यानी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। ओके जी, कोई बात नहीं है, फिलहाल मैंने वॉल्यूम कम कर दिया, अब मैं बोल ही रहा हूँ। राहुल पासी जी लिखते हैं कि गाने में सिर्फ म्यूजिक ज्यादा है। ओ माय गॉड, पहले बताना चाहिए था ना यार। अब तो कोई बात नहीं, तो गाना मैंने प्ले कर दिया, खत्म भी होने वाला है। और यहाँ पे यानी ईश्वर साबले जी लिखते हैं कि मुझे इतना अच्छा रेडियो हॉटस्टार के बारे में पहले क्यों नहीं मालूम चला। हाँ, हम मान चुके हैं। ओके, यानी विष्णु जी लिखते हैं कि गाने की आवाज़ नहीं आ रही है, वो अब तो गलती हो गई है भाई, मुझे माफ़ कीजिए। दीपक जी लिखते हैं गाना समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल, अब क्या ही बताएं, ये सबका यही डिमांड है, मतलब यही बात है। फिलहाल अगला जो मैं डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, इनका प्ले करने वाला हूँ।
1: अस्सलामु अलैकुम भाईजान, तो आज के इस बेहतरीन प्रोग्राम के लिए एक डिमांड मेरे तरफ से भी किया जा रहा है। तो फिल्म का नाम है मुकद्दर और गाना है दिल है तेरा जान है तेरी। तो इस गाने में सबसे पहले शामिल कर रहे हैं आपको और आप। और रेडियो हॉट स्टार एंड गाना के तमाम सम्मानित

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार। और जितेंद्र जी ने शानदार डिमांड करे, थैंक यू सो मच। नंदलाल जी ने अर्जुन जी का गाना भी बहुत लाजवाब लगा है, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि भाई एमडी फाइव जी के पसंद मुझे पसंद है। अगला जो डिमांड है वो प्रियंका जी का है, और प्रियंका जी सुनना चाहती है ये गाना, तू चाहिए। इंजॉय कीजिए प्रियंका जी।

चाहिए, बिल्कुल सिर्फ तू चाहिए वैसे फीडबैक आ चुके हैं। और यहाँ पे कुंतज लिखते हैं कि वेरी नाइस डिमांड के लिए थैंक यू सो मच प्रियंका जी। ईश्वर यानी कि साबले लिखते हैं कि अमन जी आपकी आवाज बहुत शानदार है, थैंक यू सो मच सर जी आपका। और गजानंद जी लिखते हैं ये प्रियंका जी का डिमांड मुझे अच्छी लगी। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला वो है शिवम जी का। शिवम जी इंजॉय कीजिए अपने गाने को।

बहुत प्यारा गाना है वैसे राहुल पासी जी लिखते हैं, यानी प्रियंका जी का डिमांड मुझे अच्छा लगा है, और सोनू गौतम जी लिखते हैं ये वाला गाना उदित नारायण की आवाज में तराशा तराशा बदन कयामत मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो हमारे ईश्वर यानी साबरे जी का है, सुनना चाहते हैं चांद तारे फूल सजम तुमसे अच्छा।

वक्त है रेडियो हॉट का सबसे अच्छा, वो थैंक यू सो मच। वैसे अगला जो डिमांड है अजय शर्मा जी का है, अजय शर्मा जी सुनना चाहते हैं रिम झिम एंजॉय कीजिए। हाय हाय हाय

वेलकम है रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बात है, और कुंदा जी बहुत ही प्यार डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने भी प्ले हो रहे हैं, प्रोग्राम भी लाजवाब चल रहा है, और विष्णु जी देते ये गाना मुझे अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और विकास गडकरी जी देते हैं तो सुपर डुपर हिट गानों की रिमझिम बरसात हो रही है, थैंक यू गाने सुनवाने के लिए। और गजानंद जी देते हैं 94.12 लव स्टोरी का बहुत ही लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के। और अजय शर्मा जी देते हैं थैंक यू सो मच अमन सर जी गाना प्ले करने के लिए। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, जो यानी कि शिवम की विनर बने थे उन्होंने अपना गाना भेज दिया है, तो मैं गाना प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए।

हाय मैं क्या करूं, बिल्कुल हाय मैं क्या करूं। वैसे यहाँ पे सोनू जी लिखते हैं कि 1942 लव स्टोरी का भी गाना मुझे अच्छा लगा है, रिमझिम वाला। और यहाँ पे मनीषा जी लिखते हैं कि ये सुपर सॉन्ग है अजय शर्मा जी का, ओके थैंक यू सो मच। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि रिमझिम वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और विष्णु जी लिखते हैं कि ये गाना बहुत खूबसूरत चल रहा है, धन्यवाद देते हैं इन शिवम जी को। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ यानी परवेज आलम जी का, सुनना चाहते हैं बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है। जी बिल्कुल।

0: बिल्कुल बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है और जाके कहाँ रपट लिखवाऊं, ऐसे फिर भी मेरे पास आए हुए कुंता जी लिखते हैं शानदार डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच। और विष्णु जी लिखते हैं बहुत ही गुड सॉन्ग है, अच्छा जी ओके। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी क्या कहते हैं?
1: अमन भैया एक बच्चा आया है और आपसे कुछ बोलना चाहता है, बोलो जी।
2: अमन भैया मेरे को गाना अच्छा लगता है, गाना तुम मेरे को, मेरा नाम लड्डू है।
0: अच्छा लड्डू जी
1: लड्डू है इसका नाम, ठीक है धन्यवाद
0: लड्डू। ओके फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो संदीप सुतार जी का है, संदीप सुतार जी सुनना चाहते हैं।

बिल्कुल, जब से देखा तुमको हम तो भाई खोए खोए रहते हैं। और राहुल पाचे जी लिखते हैं बड़ी मुश्किल है वाला गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और विष्णु जी लिखते हैं जब से देखा तुमको हम तो खोए खोए रहते हैं, गाना अच्छा लगा है मुझे। गजानन जी लिखते हैं संदीप सुधार जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं उनको। और कुत्ता जी लिखते हैं संदीप सुधार जी के पसंद बहुत ही प्यारा है, उनको धन्यवाद देते हैं। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि ये वाला गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो यानी विष्णु जी का है, वो सुनना चाहते हैं सोनी सोनी अखियों वाली वाला गाना। इंजॉय कीजिए

वेलकम बैक ऑन यहाँ पे इनकी विष्णु जी लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए, पसंद करने के लिए। और ईश्वर लाल जी लिखते हैं कि महाराष्ट्र में तो रेडियो हॉट स्टार धूम मचा रहा है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि देखा तुझे यार जिन्हें बच्ची की डर डांसिंग गाना सुनने मिला मजा के, इसी बात पर जो डांसिंग गाना सुनिए हमारे दीपक कुमार गायकवाड़ जी का, सुनना चाहते हैं ये।

0: क्या सच क्या धोखा है। थैंक यू अमन भाई इतना अच्छा सॉन्ग प्ले करने के लिए, दिल से शुक्रिया।
1: ओके जी, और यहाँ पे निकुंता बिन लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत मान के धन्यवाद देते हैं भाई। और लिखिए गजानंद जी लिखते हैं दीपक कुमार गायकवाड़ जी की पसंद अच्छी लगी है। और ईश्वरलाल जी लिखते हैं कि ऑडियो क्वालिटी बेस्ट है। ओके थैंक यू सो मच दीपक जी।
2: अमन जी आपने मेरा गाना बजा दिया और पत्नी जी ने गाना सुनकर बेलन और झाड़ू उठा लिया है। मैं बाहर आके आपका गाना सुन रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं दीपक अकोर सीनी वाला मध्य प्रदेश से।
1: ओके अच्छी बात है। फिलहाल अगला गाना सुनाता अभिषेक तिवारी जी का। अभिषेक तिवारी जी सुनना चाहते हैं ये गाना, इंजॉय कीजिए।

ओके जी, और यहाँ पे विष्णु जी लेते हैं कि भाई ये गाना तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ गजानंद जी लेते हैं कि अभिषेक तिवारी जी की भी पसंद बहुत शानदार लगी है। और कुंता जी लेते हैं, वाह क्या सुपर डिमांड। अगला जो डिमांड है हमारे गोविंदा खंडादर जी का है। गोविंदा खंडादर जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना, इंजॉय कीजिए।

सच में आज अगर आप सुन रहे हैं तो आपको भी बनाया जाता है आज का सॉन्ग भी ना बनाई हो आपको विष्णु जी लेते हैं गोविंदा खंडादत जी का गाना मुझे अच्छा लगा है धन्यवाद गजानंद जी लेते हैं गोविंदा खंडादत जी के पसंद शानदार लगी है बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए भी और निशांत साहब लेते हैं गाना बहुत ही बढ़िया लग रहा है और कुंता जी लेते हैं कि गोविंदा खंडादत जी की डिमांड मुझे बहुत अच्छी लगी थैंक यू सो मच अगला जो डिमांड है वो खुशबू कुमारी जी का है सुनना चाहती हैं ये खुशी की महफिल ओके तो सुनवा रहा हूँ एंजॉय कीजिए खुशबू कुमारी जी

और सच में आप भी बनते हैं सॉन्ग विनर, एक और गाना सुन सकती हैं। पता ना आप लोग गाना कहाँ कहाँ से इतने प्यारे प्यारे लाते हैं, दिल खुश हो जाता है एकदम।

बिल्कुल न जाने क्यों सिर्फ तुम्ही को दिल दिया है। और गोविंदा जी से धन्यवाद मनसा जी गाना प्ले करने के लिए, और दोस्तों का शुक्रिया विष्णु जी देते हैं, ये पसंद बहुत अच्छी लगी है, खुशबू कुमारी जी की पसंद बहुत खूबसूरत है। और जाकिर खान लिखते हैं कि गोविंदा खंडादे जी की चॉइस शानदार लगी है, उनको थैंक यू बोल दीजिए सर, ओके बोल दिया। और कुंदा जी लिखते हैं शानदार डिमांड के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच खुशबू। और गजानंद जी लिखते हैं कि ये खुशबू जी की पसंद बेहतरीन लगी है, उनको शुक्रिया। अगला डिमांड मैं पहले करने वाला हूँ वो सोनू वर्मा जी का, जल्ला लिखते हैं सोनू वर्मा जल्लापुर यानी सीतापुर से, सुनना चाहते हैं हम प्यार है तुम्हारे दिलदार है तुम्हारे हमसे मिला करो। जी जी बिल्कुल, कोई शिकवा अगर हो शिकायत अगर हो मिला करो।

बिल्कुल हमसे मिला करो। और यानी विष्णु जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना, थैंक यू सो मच। और कुंता जी लिखते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल फरमाइश के लिए, थैंक यू सो मच। और हमारे गजानंद जी लिखते हैं कि हम प्यार है तुम्हारे, दिल धारे तुम्हारे, हाँ मैंने भी प्यार किया, गाना लाजवाब लगा है, शुक्रिया मेरे दोस्त। और अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ वो है यानी कि करिश्मा जी का, सुनना चाहती है, बड़ी उदास है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। बिल्कुल, तो जो साथी मिले उसको ठुकराना नहीं चाहिए, इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल। यानी वैसे तो मैंने भी सोचा नहीं था कि मुझे रेडियो हॉटस्टार इतना नयाब नयाब तोहफा देगा। थैंक यू सो मच रेडियो हॉटस्टार, जो मुझे मेरी सुंदरता की मुरत दिया। ओके, और यहाँ पे निशांत एम्बुलेंस लेते हैं, बहुत ही शानदार लाजवाब गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। ओके, अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो यानी पायल जी का है। और पायल जी इंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: बिल्कुल बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत प्यारा गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच काजल झका जी, लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है जी, बिल्कुल अब आपके ही नंबर आ रहा है। और पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। अच्छा ये आपका गाना था, ओके। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि शादी की तुम्हारी बहुत ही खूब अच्छी गाना लगता है। फिलहाल अगला जो डिमांड है वो यानी कि काजल झका जी का है, सुनवा दिए, एंजॉय कीजिए काजल झका जी।
1: आहा

वेलकम बैक। और यहाँ पे विष्णु जी लिखते हैं कि यह भी गाना मुझे सुंदर लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि अमन सर जी सभी दोस्तों की पसंद सुपर सुपर सुपर लाजवाब लगी, सभी को धन्यवाद देते हैं। ओके जी, और फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ।

है हमें इनायत खान जी का, ये सुनना चाहती हैं दिल दे दिया है और अपने इन शौहर जी को सुनाना चाहती हैं, मतलब अपने हबी हस्बैंड जी को, तो सुना दिया, एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल मैं इंदा का नहीं करने वाला हूँ, और वैसे फीडबैक आ चुका है, और गजल जी लिखते हैं आदरणीय अमन जी आज का प्रोग्राम नंबर वन हुआ है, थैंक यू सो मच। और गजल जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। विष्णु जी लिखते हैं कि दिल दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम, इनायत खान जी की पसंद नंबर वन। ओके जी, और अर्पिता जी ने अपने गाने को भेज दिया है, ओके मैं कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल अशोक इंदपाल जी का मैं गाना प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि ये गाना तो मेरे ऊपर भी सेट करता है कभी कभी, क्योंकि यानी कि कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ

और विष्णु जी लिखते हैं कि ये गाना बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद, एकदम मेरे मन खुश हो गया इस गाने को सुनने के बाद। और काजल जी लिखते हैं गाना मुझे सबसे अच्छा लगा है। काजल जी लिखते हैं कि कर सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, बहुत ही प्यारा गाना लगा है। और हमारे ईश्वर यानी साबले जी लिखते हैं कि मेरा फेवरेट गाना है, आई लव रेडियो हॉट स्टार, ओके जी। और अकुंता जी लिखते हैं कि अमन सर जी बहुत ही प्यारी डिमांड है और सभी का फीडबैक भी बहुत ही प्यारा लगा, थैंक यू सो मच। अगला जो डिमांड है वो विजय कुमार जी का है और सुनना चाहते हैं, जरूरी था, बिल्कुल जरूरी था भाई।

0: था।
1: बिल्कुल जरूरी था। वैसे हम मैंने इनका जन्म जी लिखते हैं कि भाई इन विजय जी के पसंद मुझे अच्छी लगी है। और अगला डिमांड है हमारे जाकिर खान जी और निशांत राय बोले जी दोनों की एक ही डिमांड है और सुनना चाहते हैं बहुत ही प्यारा गाना आके भर लो बाहों में जान मेरी जा रही सनम। एंजॉय कीजिए।

ये गाना सच में दिल को छू गया है। निशांत भाई बोल लेते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और अगला जो डिमांड है वो बिपाशा खुराना जी का है, सुनना चाहती हैं गहरा हुआ। एंजॉय कीजिए गाने को।

का मैं एक रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे, और वैसे फीडबैक बहुत सारे हैं, और निशांत बोले जितने गाना बहुत ही अच्छा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं, और काजल झका जी जितने बहुत ही प्यारी डिमांड है, थैंक यू सो मच, और राधा किशन को भी देते हैं बहुत लाजवाब डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं, और यहाँ पे जाकर लेते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने का। अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करूँगा, यानी कैनाजी का, कैनाजी सुनना चाहती हैं ये गाना, इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे। राधा जी लिखते गाना मुझे बहुत प्यार लगा है, थैंक यू सो मच कहना जी को। राधा कृष्ण को लिखते सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, थैंक यू सो मच। आजाद मुमताजी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और अकुंता जी लिखते हैं कि ये कहना जी की डिमांड सुपर सुपर सुपर लाजवाब है। और अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो मतलब अर्पिता जी का है, जो आज इन्हें विनर बनी हुई है। उनके गाने को प्ले करिए, इंजॉय।

बिल्कुल आती है। और नंदिनी मां लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम बेहद खूबसूरत लगा है, सभी का की पसंद, सभी की डिमांड बहुत ही शानदार थी। काजल जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा लगा है, थैंक यू। अर्पिता जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ हुकुमचंद जांगड़ जी का, एंजॉय कीजिए तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ। कहाँ भाई।

वेलकम एक रेडियो हॉट जो दीवाना है कुंता जी देते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल डिमांड के लिए। थैंक यू सो मच गुप्तन जांगिड़ जी और काजल जी लिखते हैं गाना मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और मीना कुमारी लिखते हैं कि ये गाना अच्छा लगा। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ अनिल कुमार जी का सुनना चाहते हैं, मैं निकला गड्डी लेके। बिल्कुल

0: पे तेरे आशिक।
1: ओके और यहाँ पे कुलता जी लिखते हैं ब्यूटीफुल डिमांड, थैंक यू सो मच। और इसी बात पर आज का आखिरी जो यानी डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ, आज जो यानी खुशबू कुमारी जी आज के यानी विनर बनी हुई थी उनके गाने को मैं प्ले करके निकलने वाला हूँ, क्योंकि तो चलो एंजॉय कीजिए इस गाने को।

और इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, धन्यवाद। एक गाना मेरी पसंद का भी सुनते जाइए, मैं कोशिश करता हूँ उसको प्ले करने की, लेकिन भाई ने प्ले ली।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: गया, आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया, हाय क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया,
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया,
0: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया,
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया,
0: आई गो आई गो आई।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता।
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
0: फिर भी जरूर, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
1: सोचने दो।
0: बुरा मत मानना जरी, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर ये भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: लेकिन जरी, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
1: तुम मुझे प्यार करते हो।
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद अब पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
0: प्यार तो करता हूँ जरी, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन
1: प्यार करते हो ना?
0: पर जरी तुम
2: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.